वह जो सेवा तुद जी जन नानक तिन कुर्बान। हर त्याव है, हर त्याव है तुद जी, हर से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर

जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म पाया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाई विसरिया। आसा महला पंजवां।

ती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबे तुम का वहो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख

जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा।

दृष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद सिद करमो सब होई, दुष्ट शाह छुए सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभा